भगत है आप जय पसरे पा सार संत प्रताप दूह पाका आपे धनी उनकी सुबान हो बने आपे कौतक करे आनंद चो जापे रस भोग निरजोग जिस भावित सपना इलाव है जिस भावित स्केल खिलाव है बेशुमार था अगर ते तू लै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दू जाके दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात इस भावित सृष्ट पाए अपने बाणे लय समाये तुम दे बिन नहीं किछ होए अपन सूत सब्जेक्ट प्रोए जाखो प्रभ जीव आप जाए सचनाम सोए जन पाए सो समदर्शी तत्कविता नानक सकल सृष्ट का जेता जी जंत्र शब्दा के हा दीन दयाल नाथ कुनाथ जिस राखे तिस कोई ना मारे सो मोह जिस मनो विसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब श्रेय निरंजन राय जी की जुक्त जाके स्वहात जी की जुक्त जाके स्वहात अंतर बाहर जानो सात गुण नान बेंत पार नानक दास दाम लिहार पूरन पूर दयाल सब प्रभुवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप प्रतपाल जीवन भव भात जो जो चुत से त्यात जिस भावै तसलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने कर हर नानक एक जाने जन लाख हर एक कहना जिसकी आसन मृत्यु जाए सेवक और सेवा बनयाए हुक्म बुझ परम पद पाए इसते उपर नहीं विचार चाके मन मस्या निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पै रहे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ परम आनंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है स्वाठ पहर प्रभे को नेरा मिटे ज्ञान मिन सहन धीरा सुन उपदेश हृदय बसाव मन छे नानक फल पावो हलत पलत दोली हुशवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दीख्या जिस मन वसे तिस साज परिख्या ना मन तन नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापार इधर गहने भय के तुम्हारी ये काटे कर को मन माहे नानक भर न या बह जाहे तिस्ते दूर कहाँ खो जाए पर राखन हार ते आए नर पाओ जपे सगल पाओ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राख तिस नाहे दुख नाम जपत मन हो बत सोख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पे कदो दृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर धन सेवा सेवक परमानंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन वसै सहोत निहाल ताके निकट नावद काल अमर पहे अमरापद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान जिन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगत प्रभिटा नाम प्रभु काला गा मीठा सकल समगरी किस घाट माहियन करंगना न दृष्टा है नाव नद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन तैनाद कह न जाई चट विस्माद तिन देखे जसाब दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद घट घट व्या प्रया भगवंत धारण माहे आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जय सिया कह तैसा कर्म पावन पाणी बेसंचर माहे चार कुंट दे दिसे समाए दिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससिर सुर न खतर मैं एक बाणी प्रभ की सब गो बोले आप डोल न कब हूँ डोले सर्वकला करके लै खेल मूल न भाइया गुण मूल सर्व ज्योत में जाके जो तार स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तन में हम विश्वास संत जना का बेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होई सोई सुख माने कर्ण करावन हर प्रभ जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख समूही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सकली उत्पत तिस भावे ता करे विसार तिस भावे ता एक ओंकार अनेक लाल की न जाए जिस भावे तिसलय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतरगा दिशा जनाए नानक ते जना बुझाए सरभूता अवतारा सर्व नैन आपे कनखारा सकल समगरी जा कहता ना आपन जस आप ही सुना आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मद लिप्त रह जो कुछ कहना सु आपे कहे आगे आवे आगे जाए नानक जा भावे तले समाए इसते हुए सुना ही बराबर है कहो किने कुछ करा आप ला कर तू तद नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बुद्ध अपन संग्राज ताकि गत मिंद कही ना जाए दूसर होए दसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक केहु जान
ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਆਪ ਮਿਲੈ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਰ ਭਵਨ ਕਟ ਕਰ ਪੇਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੋ ਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਪੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਆਧਾਰ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਮਲੀਕ ਲਾਲ ਰਤਨ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕੈ ਨਿਸ਼ਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹ ਦਵਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ ਸੰਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਾਏ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਬਰੇ ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਲੈਨ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਸ ਨਾ ਕਹਿਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਸਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਖੇਪ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੇਤ ਸਾਵਧਾਨੇ ਕਾ ਕਰਚਿਤ ਸੁਖ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋ ਤੋ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਇਓ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਨ ਜਾਨ ਹਰ ਤਨਖਾੜ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਤ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈਸੇ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੇ ਮਤ ਸਕਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਤਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹਿ ਮੁਖ ਭਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दैशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाहो मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

हे पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास जा सतगुर दे चरणा विच अरदास कीती फिर सतगुर ने अरदास सुनी जेड़ा अरदास सुनता है जेड़ा अपने सिख दी लाज रखता है फिर उहदे चरण तोतो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे कई कहिंदे ने अरदास कीती पर अरदास पूरी नहीं हुई पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास अरदास कदी बिरथी नहीं जाती श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शना वास्ते आंदियां हन इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वह भी आए हैं एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई समा बीतिया वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी इस बच्ची ने भी अमृत छकिया पहला नाम बसंत लता सी अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया सरसा नदी पार की सरसा नदी पार कीता गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालीक दे करीब सिख एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे सारा परिवार और सिख विछड़ गए इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है कमर कसा कीता है ये भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है ठोकर लगी थले डिग पई सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए समुंद खान ने कहा बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना ना कोई तेरा सिख भरा मेरी बेगम बन जा राज करेंगी पर बसंत कौर ने कहा समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया मैं प्रण किया दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है बसंत कौर नू कैद किया गया तसीहे दिते लालच दिते पर बसंत कौर डोली नहीं आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नू कैद किया गया समुंद खान उस कैद खाने विच आया बसंत कौर नू कहन लगा बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं समुंद खान अगे होया बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नू पकड़न वास्ते पर बसंत कौर थड़े तो एकदम उठ के खलोई गरज के कहन लगी ओ दुष्टा परा हो जा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया जद कहा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है उस वक्त बसंत कौर नू प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया हिलजुल नहीं सी सकदा फिर इसने
बेनती की बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां ते मथा टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करन।

कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवल चीरा रहाव सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाई आ सिद्धा पुरखा किया वड़ियाई आ तुद विण सिद्धी किनै नाम पाईया कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्रीअस्तु।

सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय। भाद्र

संत साजन पहे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहती पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगिया।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर

बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार।

ज्योति ज्योतरली संपूरन थिया राम अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुरदेखा सामने सो कह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद दिठे सच्चे पातशाहो मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहांद साहो जिस पास बहिठिया सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम

0: सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुदया गै अरदास हमार जियो पिंड सागर।

चंदन निकट सब चंदन हुइया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभिमान विछुड़ दूर गईया। हर गतमित करता आपी जाने, सब विद हर हर नाम बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखे

0: Nava Sanktavagam Agama Sanklo
1: Asanke Sirvaroe Akri Nam Akri Sala Akri Nyan Gitunga
0: Akri Likhan Bolan Bane Akra Sir Sanjog Vakhana
1: Jinnan Likhet Sirnaye Jifirmaye Tirtibaye
0: Jita Kita Teta Navar Nava Nahi Kothao
1: Kudrakam Kavi Char Vare Na Java Vekva
0: Jodh Pavai Sai Palikar Tu Sada Salam Tinirankar
1: Priye Hath Fair Tante Pani Turte Atraskhe
0: मूत प्लीति कपड़ होए दे साबुन लिया हो तो ए
1: प्रिय मत पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग
0: अपनी पापी आखन नाही कर कर करना लिख ले जा हो
1: आपे भी जापे ही खाओ नाने हुक्मिया हो जाओ
0: तीर्थ तप दया दत्त दान जी को पावे दिल का मान
1: स्नेह मनी मंकीता पाओ अंतर्गत तीरथ मनाओ
0: सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भक्त न होए
1: सात बानी बरमाओ सत सुहान सुहाओ
0: कौन सुवेला भक्त कवन कवन थित कम

0: समस्ती स्वरूप परमंगी
1: परमात्य समस्ती प्रभुते
0: कलंक बनाने कलंकी स्वरूप
1: नमो राजेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राजेश्वरं परम प्रदे
0: नमो सस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता
0: अपेक्षी अपरमेय अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम।

0: नमो रोग रोगे नमस्तं सुनामे
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत जंत
0: नमो ईष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सजत दाद सर्वं प्रणासि
0: अनुपे अरूपे समस्तु निवासी।

0: जात है अजात है,
1: सर्वहंता
0: सर्वंगंता,
1: सर्वख्याता सर्वज्ञाता,
0: सर्वहर्ता सर्वंकर्ता,
1: सर्वप्राणं सर्वत्राणं,
0: सर्वकर्मं सर्वंतर,
1: सर्वभूता सर्वभूता,
0: सर्वशंत्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाश
1: अनंत स्वरूपे अमंगलं भूते,
0: परमात्म परमाते सदा सर्वसाते,
1: अकाश रूपे निर्वात भूते,
0: अनंगीय नामे दर्भंगी दृकामे,
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे,
0: पुत्रे न सत्रे न मित्र,
1: न ताते न माते न जाते न पाते,
0: सकंसरी के अमितो अमीके,
1: सदैवं प्रभा है जय
2: है, भगवती छंत परसा की जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है,
1: हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है,
2: के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है,
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है,
2: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है,
1: करीमुल कमाल है के दुर्रा जमाल है,
2: गनीमुल खिराज है करीबुल निवास है,
1: फुल शिकान है हरी आचल ठिकान है,
2: कलंकन परनास है समस्तुल निवास है,
1: अकजुल करीम है रजायक रहीम है,
2: समस्तुल जुबा है के साहिब की राह
1: है, नरकन परनास है बैस्तुल निवास है,
2: के सरबुल गवन है अमेसुल रमन है,
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है,
2: परम परम ईस है समस्तुल अदीस है,
1: अदेशुल अलेख है
0: अमेसुल अपेक है,
2: जमीनुल जमा है अमीकुल उम्या है,
1: करीमुल कमाल है के जुरा जमाल है,
2: के अचलन प्रकाश है के अमितो सुभाष है,
1: के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है,
2: के अमितो पसा है के आत्म प्रभा
1: है, अचलन आनंद है के अमितो अपंग है,
2: मधुपर छंत प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदा,
1: हर बर गंज हर नर पर मंज,
2: अन गन पर नाम मुन मन सला,
1: हर नर अखंड बर नर अमंड,
2: अन पव अनास मुन मन पर
1: गुन गन पर नाम जल थल मुदाम,
2: अचिच अंग आसन अपंग
1: उपमा अपार गत में तुदार,
2: जल थल अमंड दिस विश अपार,
1: जल थल महांत दिस विश बेअंत,
2: अन पव अनास ते तर तुरा,
1: आजान बाहु एक के सुदाहु,
2: ओंकार आद कतनी अनार,
1: खल खंड के आल गुर भर अकाल,
2: कर कर पर नाम चित चरन नाम,
1: अचिच गाता जिज न बात,
2: अन जज गात अन रंज पार,
1: अन टुट पुनार अन डठ पार,
2: आ डीट तरम अत डीट कर।

0: सरबन पर है सरबन कर है,
1: सर्वनाशा है सर्वनाशा है,
0: करुणा कर है बेसंबर है,
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है कलकंडस है,
1: परते पर है करुणाकर है,
0: जपा जपे थपा थपे,
1: अर्था कृत है अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है करुणाकृत है,
1: अर्था कृत है तरनी कृत है,
0: अमितेश्वर है परमेश्वर है,
1: अर्था कृत है अमृता अमृत है,
0: अजब्बा कृत है अमृता अमृत है,
1: नायक है कलकायक है,
0: विसंबर है करुणालय है,
1: निर्णायक है सर्पायक है,
0: पंजन है अर्गंजन है,
1: विद्यापन है जपजापन है,
0: अकलन कृत है सर्वाकृत है,
1: कर्ता कर है हरता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म है,
1: आत्म बास है जस के जस है,
0: कुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेज,
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज,
0: नमो राज संताम संसात रूपे,
1: नमो परम तन तन

0: भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल पढ़ना में समस्तुल पढ़ना से कामन बेपुते समस्तुल स्वरूपे सदा सचदानंद सतरन पढ़ना अजाय बेबूते गजाय गनी में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते दुकालन पढ़ना सीधे आलन स्वरूपे दुकालन पढ़ना सीधे आलन स्वरूपे
1: सदा अंग संगे अपंगम प्रभुते
0: वाहे कुचिका खालसा।

0: प्राणपति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते कृति विनय कृति के
0: माध्यम तंग रज संग अनोप अतंग सुरंग सवारे
1: कोट रंग कुरान से कुदर पौन के गौन को जात निवारे
0: पाए पोचंग के पोपिले बिजनावे शेष न जात बिचारे
1: एते पे तो कहा पे पोपते अंत को न कही पाए पधारे
0: जी फिर सब देश सों को बाज दो मदंग नगारे
1: गुंजत गुण गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
0: पवन के पुवत गंग रानी जात बिचारे
1: श्री पा श्री भगवान मजे अपने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तेरे नाड यदम दम सुसंज नेम अनेक पिसे के
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सुबान के पेखे
0: कौन अहा चुति चौता सुबह सुबह चार हजार के देखे
1: श्री भगवान मजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे
0: सुदस पा तुरंत दबा सुसार सुना तो जान तलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत बंधन हले न हलेंगे
0: तोर अरे मुरो मवासन माध्यम तंग मान मलेंगे
1: श्री पा श्री भगवान की पाप इंतिया जहां निदान चलेंगे
0: फिर अपाप रे वयार अब चारे साकी ता बचाया
1: तोर देश मलंद मवासन माते के जान के मान मलेया
0: कारे करां को तो अनहा सुबातन ही चक चाल लेया
1: साहिब श्री सब को सुनाए जाचक ले छुए के दवैया
0: दानव देव निर्णय साच बोध विवेक पवान चपेंगे
1: जीत जीते जल में थल में पल ही पल में सब था
0: पुन प्रतापिन पाद जय तुम पापन के पुंच कपेंगे
1: मानव
0: इंद्र का चंद्र राधव जोन तो लोक राज करेंगे
1: कोश नाग जाति दान अनेक स्वयं प्रसाद करेंगे
0: ब्रह्मा है सब सिंह सच पर अंत वे सजम फास परेंगे
1: जे न श्रीपत के प्रसाद पग ते न फिर न दे करेंगे
0: काप चौदह लोच मुन के बैठे भगतान गायो
1: नाथ प्रियोरिय समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: आस्के बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो
1: साच को सुन लो सब जिन प्रेम कियो तिन ही पपायो
0: पान पूछ यो सिर खाल लिंग कर तखायो
1: काहू रिखो अरवाची दिशा में काहू पिशा

0: परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे।
1: जोकल कोई बाद या है ताके काल हिनी आए है।
0: रचा होए ताई सब काला दुष्ट अलिष्टरे तत्काला।
1: कृपा दुष्ण जाए नार हो ताके ताप दिनिक मार हो।
0: रेत सिद्ध कर्मों सब हुई दुष्ट शाश्वे सके ना कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें सिंबारा काल।

0: मन बाशद फल पावि सोई दुग्नाति से व्यापद कोई रिलय
1: स्नेह गुम जो यास रस न पावे स्नेह मोच लटित आवे।

0: सिफ्स कदा बुबाय के करता आपे हुकम वरताए,
1: आपे के गुरमुख से बुझाए।
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन।

चक्र चेहने और बरन जात और पात नहन जेहे रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुपौ प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सुकह टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटी है तुद दिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठया सोही है सब नांदावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

हर चंदन वास सुगंध गंधैया, मिल सतसंगत परम पद पाया, मैं हिरण पलास संग हर बुहिया। हर जगन्नाथ जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उबरे, ज्यों

चंदन निकट सब चंदन हुइया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभिमान विछुड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने, सब विद हर हर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया। गुरचरनी सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते भावनी कहिया। बार बार खिन खिन पल कहिया, हर पार न पावै परै परैया। सासत वेद पुराण पुकारै, धर्म करहो खट

हम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सब कुछ सच सुमावे ऋग कह रहे अपरपुर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्रच जय नानक तो मुखंत्र पाए जुज में

धोती के खाई, हथ श्री जगत का साई, नील वस्त्र पैरो वे प्रवण, मलेश तहन ले पुजे परण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसने जाना, देखे चौका कड़ी।